0: शॉपिंग भी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
1: तो
0: है
1: ऐसा बोलो ना
0: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान ये हुई ना बात
2: क्यों छोटे साहब वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण। इन्हीं निगच्छियल तोड़न्द निरलगल पड़तरकाग वरकूडिय पाडल इदु தீபன் சக்கரவர்த்தி மற்றும் உமாரமணன் பாடியது இளையராஜாவின் இசையில் கங்கை அமரன் கற்பனையில்.

0: सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
2: है। ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान।
0: ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।